इस पर इस क्या की इताम एक क एक इस क्या की इताम एक क एक इस क्या की इताम एक क पत्सो सोक आग नमों बासी ए वो से ए नकब ए या का ए मुआ Ibusi inakbu iya ka imua. Ibusi inakbu iya ka imua. Petusuk ak namun basi.